0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लगी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: भर्ना खुलियो।
2: प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र में आपको अलग र विशिष्ट पहचान बनाने सफल अनुभवी एवं दक्ष शिक्षक द्वारा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान करते आई पोखरा विश्वविद्यालय संबंधन प्राप्त एस कलेज अफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सीओईएम नेपालगंज में शैक्षिक सत्र 2083-84 का लगी चार वर्ष बैचलर अफ सीविल इंजीनियरिंग विषय 13 ब्याजमा र ब्याचलर अफ आईटी इंजीनियरिंग 6 ब्याजमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
1: प्लस टू वा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्राविधिक धार वा विज्ञान संकाय गणित वा बायोलोजीमा जीपीए प्रणाली अनुसार कम्तीमा सी ग्रेड वा 45% उत्तीर्ण सम्पूर्ण इच्छुक विद्यार्थीहरूले यथाशीघ्र सम्पर्क राख्नुहोला। साथै स्थानीय तहबाट सिफारिश भई आएका गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ।
2: हाम्रा विशेषताहरू
1: उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण
2: अनुभवी एवं दक्ष शिक्षकहरू द्वारा पठन पाठन गराइने
1: व्यवस्थित पुस्तकालय प्रयोगशाला र इन्टरनेट पहुँच
2: उपयुक्त शैक्षिक एवं रोजगार परामर्श
3: विस्तृत जानकारीका लागि कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नेपालगंज 10 शीतल नगर बाँके जिल्ला वन कार्यालयको पूर्वपट्टि सुर्खेत रोड
4: सम्पर्क फोन 081-536-086
1: र मोबाइल नम्बर 98480-96600 98580-36086 र 98481-72073।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदै भरी लाए
1: मध्य पश्चिम ट्रांड चेक यति बेला दिउँसोको दुई बजेको छ।

राम राम मैगर कवि लाहुको हार्दिक स्वागत बा थारू भाषा के कार्यक्रम अपनाको आवाजमा पकपी मई बाटू अपनाक माझमा उपस्थित हो सकल बाटू शालिक राम चौधरी पकपी आज फिर हम उपस्थित हो सकल बाटे हम अपनाक आवाज लेकन यह समय बिहीबार का दिन हम दुई बजे का मध्यपश्चिम हाइलाइट पास करीब करीब हम तीन बजेसम रहना करती वह अनुरूप आज फिर उपस्थित हो सकल बाटी पकपी अपनाक आवाज अपना को कार्यक्रम हो अपन प्रतिभा सुनिरा कार्यक्रम हो अपना को गीत गजल कविता जैसुकी प्रतिभा ज्याहोस् रेडियो में सुनिरा लायक अपन प्रतिभा अपनाऊ ग्रह सुनाई सीखने बाटी अगर कलाक अपनाऊ ग्रह 082-568-54 नंबर डायल कर आई पर्ना हो अपनाऊ ग्रह ये नंबर डायल करना आईबी कला से पक्के अपन प्रतिभा सुनाई सीखने बाटी रमाइलो गपगाफी होने बा नगर के बिलाऊ ग्रह अपनाऊ ग्रह रेडियो मध्य पश्चिम इंटरनेट के पहुंच बाटी कला से www.radio.org लगइन के कना सुन फेस सीखने बाटी उसका हम पात्रो मोबाइल एप्लीकेशन में से फिर अपनाऊ ग्रह रेडियो मध्य पश्चिम सुन सीखने बाटी हमारा अपना का आवाज रेडियो मध्य पश्चिम की फेसबुक में से फिर हमारा लाइव करल बाटी अपना ग्रह रेडियो मध्य पश्चिम नेपाली में टाइप कर बिकल से पक्की वहां से अपना ग्रह भेटिने बाटी सुन सीखने बाटी वहां से फिर ध्यूर माध्यम बा अपना ग्रह जहां से सहज उठा वहां से अपना ग्रह सुनकर साथ दिखना आशा फिर बाटी ई कार्यक्रम में आकर अपन प्रतिभा सुनईना कार्यक्रम हो अपना ग्रह अपन प्रतिभा धारा सीखने बाटी हमारा अपना ग्रह को प्रतिभा कदर करती दांसी पुरस्कार के व्यवस्थापित कैदरखले अपना ग्रह प्राप्त करने बाटी स्वर्गद्वारी वाटर सप्लायर्स के तरफ से जहां जीवन चौधरी वहां के प्रतिनिधि हुई वहां का तरफ से अपना ग्रह एक कार्टून पानी की व्यवस्था कैदे रखला उसका 100 रूपये कृषि चार्ज कार्ड फिर अपना ग्रह प्राप्त करने बाटी अपना ग्रह 082-568-54 डायल करती करी अपना माज में फोन के प्रतीक्षा में एक सुगर गिदर छाटो अपना ग्रह डायल करती करी 082-568-54

0: मैगर का बिलाह को अपना कमाल समान रो सुगर की धैरक ले थारू कना की इतिहास कई थारू दंसे जर जागरण कई कोई ना दंसे चेतनामूलक अपना कमाल में सुगर की धैरक ले ये गीत बस्ती बस्ती की उस संगर यहाँ संपर्क में आस्ते कल बात है वाना स्वागत कर दे रही। हेलो राम राम।
1: राम राम।
0: राम राम कहाँ से के बोलिए? हमार नियमित सङ्ग्रह एकदमै रिडी मध्यपश्चिममा उहाँमा फेरि आफ्ना आवाज कार्यक्रममा धेर मया करिया हाम्रो श्रोता खुसी राम चौधरी फोन गरेर अरू कहाँ हाल खबर
1: मजा बाटो मजा
0: दान्छे समस्या भएको सबै त रुगा खो कि त बिस्तारै सन्चो छैन त अरू त सबै ठिक भए खेती बाटी फेरि आफ्नो हो गाउँ आजकल कार्यक्रममा सम्झली आजका सुने इतिहास
1: आज
0: ठिक छ ल सजना सुनि आफ्नो कार्यक्रममा आएको गीत गाउँछ कुछु गा सुनि थिए वट चैनार कराइदिस नि त ल सुरु गरि ल
1: भोलि त म जाने आइ त डान
0: ल सुरु गरि
1: हरे काटौँ न गाइल रे मर रे गाउँ

0: れ借りまして、トララバジアワレガギアナバタル。おちやうらりばてんどららがいやこちゃだうえ。あれ、おちやうらりばてんどららがいやこちゃだうえ。あれ、じゃあいた、おしがいやめらりれ。सुखी गई लागे के पाचीना वाचोली रे बंधन बिजला सुखी गई लागे के पाचीना वाचोली रे बंधन बिजला पुर तो हमारा बोलिया नहीं आया था आपके साथ हूँ
1: अप्रवाण है एकदम मजा आ रहा है एकदम सुगर गीत सुना दिली सजना सुना दिली अपना गाय ढिहुर ढिहुर धन्यवाद बा ऐना दिन बा फेस्ट को समझौटी कर भी अब एक गज भाषा में एक तो सुगर गीत बजीने बाटी अपन संग साथी अपन तो ना समझ सकती
0: सबसे प्रथम तो अपने को इन समझतो दूसरा वही सब ऐसे पास दूसरा मुझे पंड के पेड़ अलग प्राविधिक ना समझतो ये मध्य पश्चिम रेडियो सबको परिणाम समझातू और समय न खुशी राम के चिन्ना नी चिन्ना सबको जाइन समझातू और समय से अगारे लकीर न तो रेम के ध्यान ध्यान समझातू अपन मैं के पास आई सब कौन समझते जी दावी तू
1: राम राम वहाँ रहला खुशी राम चौधरी सिंगूरा से समझल रहला आप अपने पहला सुने बयासी पांच साठ या सात सौ उन्नीस नंबर डाल के क्या आई सकनी बाटी वक्त अपना प्रतिभा धरना कार्यक्रम हो अपना कावाज मैं बाटो अपना माझ में शालिग्राम चौधरी उसंग आस महीना प्रावधिक रूप में शांत कुमार बुढ़ा मगर महीना सात तिथि आई सकने बाटे शून्य बयासी पांच साठ आठ सौ चौवन नंबर डायल के ये नंबर डायल के एलबी कलर से पक्का फिर अपना प्रतिभा सुन सीक्ने बाटी अपना आई सकने बाटी शून्य बयासी पांच साठ आठ सौ चौवन नंबर डायल के हमारे प्रत्येक ई कार्यक्रम हम प्रत्येक बिहार के दिन दुई बजे का मध्य पश्चिम आइलास हम करीब करीब तीन बजेसम रहना करते ये अवधि में अपना फोन कईकन अपन प्रतिभा आई सकने बाट अपना रेडियो मध्य पश्चिम के फेसबुक में से लाइव में से अपना ये कार्यक्रम सुन सीक्ने बाटी खा परल अत्र बेला कि संगे हमारा संपर्क में सायद नील हईटक हूं अत्र बेला फिर एक सुगर गीत सुनेगा हूं डांसे चैनार कर कार्यक्रम में स्वीकारी

0: मैकर कविला हम
1: रफनक बाज म प्रसु गर्गी धैरखली पक्कके मन परहली रोशन दत्तगया र संगीता चौधरी के स्वर मरला गीत पक्कके आत्रा बेला आफ्नो रिरी मध्य पश्चिम एकानब्बे बुद्धा चार मेगाजको कार्यक्रम अपना आवाज सुन्ती बाटी मई बाटो शालिक राम चौधरी उसँग शान्त कुमार बुढा मगर आस महिना प्राविधिक रूपमा साथ दिदीबाट पक्कै हाम्रो कार्यक्रमकै पुच्छार पुच्छार हो र आशयकाल बाटी त्यो सँगै अही कलस्तै हाम्रो पक्कै कार्यक्रममा पक्कै हाम्रो भित्रिनी बाटी त्यो सँगै हाम्रो सम्पर्कमा आशयकालबाट स्वागत गर्दारी हेलो राम राम
2: हजुर राम राम
1: राम राम कहाँ से के बोल्ले अपने तो बारह मिनट तक काम ही मतलब खाली नहीं रहती कहाँ है ना
2: खाली वो तीन खाली तो नहीं बैठे
1: काम नाम अच्छा स्कूमिटी लाती कहाँ पर आप
2: आजी राजी
1: ठीक बात गप गप तो उसको करी करी आज क्या सुने इतिहास
2: एक तो गीत गीत आप ले दी चुके
1: अल्लाह शुरू करी
2: परमन्नमा न बाए को कसले दियो जन्म

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन फिजिशियन हार जोड़नी नशा प्रसूति रेडियोलॉजी एनेस्थेसिया बाल रोग थायराइड प्रेशर सुगर छाती मुटू नाक कान घाटी टाउको को गैस्ट्रिक अल्सर फिजियोथेरापी दूरबीन विधि ऑपरेशन लगायत स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण काम हुन्छ।

0: आदरणीय श्रोता दाङ सूचना तथा संचार सहकारी संस्था द्वारा संचालित आवाज उनको आवाज पश्चिम नेपालको आवाज रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 MHz प्रसारित जेष नागरिक सरकार कार्यक्रमबाट बोलिरहेका छौ। संचालक ददराम खनालको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी जिल्लाहरू दाङ र आसपासको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 MHz साथसाथै इन्टरनेट अनलाइन www.radioMP.org लगन गरेर अथवा सामाजिक सञ्जाल मार्फत रेडियो एप्लिकेशन डाउनलोड गरेर संसारभरबाट एकसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 MHz फेसबुक पेज लाइक गरेर पनि आफूले चाहेको समयमा संसारभरबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 MHz आफ्नै उत्पादित र प्रसारित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत यस क्षेत्रमा रहनुहुने ज्येष्ठ नागरिकहरूको आफ्नो जीवनको भोगाई र गराईलाई अहरकै मुखारविन्दुबाट हाम्रा श्रोतामाच पस्किने कार्यक्रमको रूपमा लिएका छौ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ घुराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 रामपुर सुकीदाईको शुभराम चौधरी। चौधरी भन्न बित्तिकै यो दाङ जिल्लाको यो समथर भूमिको जुन चाहिँ धरती पुत्र भनेर चिनिने जात नै थारू अथवा चौधरी जातिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जीवनमा गरेको भोगाई र गराईलाई आफ्नै मुखारविन्दुबाट आफ्ना श्रोतामाझ पस्किने उद्देश्यका साथ आज चाहिँ उहाँ सुर्खेटाईबाट हाम्रो रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 MHz कार्यक्रममा आउनु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न गइरहेको छु। स्वागत बा शोभाराम चौधरीजी।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: मजा बा
1: मजा बा।
0: आफ्नो बुढाइल त हुइले अब 80-83 वर्षको उमेर त बुढाइल बुढाइल त मनाइ हु त शरीर देख्ला त तन्दुरुस्त शरीर बाबैन यी एसिक शरीर लेके आफ्नो कैशिक परिवारमा जन्म आफू छुटीमुटी हुइलक जन्म जन्मलक समय आफ्नो जिम्मेदार परिवारमा जन्मैलक हो कि रैटिन परिवार
1: परिवार जन्मलक हो
0: परिवारमा जन्मलक हो
1: हाम्रो दुःखको मेहनत
0: मेहनत पाछे कर्ली पहिला पहिला आफ्नो बाबा दाई बाबा कहाँ कहाँ छ
1: दाई बाबा त अब दुःख पहिला अब के सुनल पढल लेखल
0: जग्गा जमिन दाई बाबाको हो कि नै दाई बाबा खेतीपाती करलक आफन जग्गा हुई कि
1: आफन
0: दाजु भैयन दिदी बहिनी कै कै दाजु भाइ दिदी बहिनी बाबा
1: दादु दादु फिनी रह बहिनी भर अठो रह
0: आफ्नो एक ठो बहिनी
1: बहिनी
0: दुई ठो केल
1: दुई ठो
0: बहिनी बाकी नै
1: बहिनी त बुढान दु अथवा बाए अथवा नै हो बुढान
0: पट्टा नै लागौ
1: नै लागल
0: मुगिल कि
1: मोल जेल नै ठाउँ हो हाम्रो दिदी दिदीको ऊ फिनै
0: बुढान गइलक अहिले एकको नै अहिले आफै पनि नै गइलक
1: मन पर्यो गेलस गेलस अब गेल छान
0: ओकर छावा छाइन कत्र घुइल कुछ थाहा पत्ता नै
1: ओकर छावा छाइ कठा घुइले का होले कसिन भयो कसिन दुःख खाइदा कि सुख खाइदा मिठा
0: नै छ कत्रको उमेरमा गइलको
1: 1500
0: आफ्नो लिखल पढल गरे छुटीमुटी उमेरमा केटाकेटी उमेरमा लिखल पढल गर मिले कि नै
1: हाम्रो लिखल पढल त नै रहे अब स्कुल फिर्ने रह कुछ फिर्ने रह हाम्रो लिखल पढल यो भरतपुरमा आउँछौ हाई स्कुलको नाम स्कुल नै रह स्कुल त हाम्रो
0: आफ्नो पढे लेखे उमेर भरतपुर हाई स्कुल त बाबै
1: थिए असल त अब हाम्रा राष्ट्रिय स्कुलको नाम बा हाम्रा गाउँ बनाएकै छुटीमुटी छात्र बनाएकोले त्यो काठमाडौँ भक्तपुर से उता विकास गर्न आइल विकास गर्न आइल त छपरा बनाएको स्कुल बना दिएर त्यो स्कुलमा हाम्रो पढ जाए हाम्रो ढेर क्लास नै हाम्रो जल्दी त ऊ हाम्रो मटिक्याल बार के लालटिंग में बार के पढ़ना रहे मटिक्याल में हम लालटिंग में बार के पढ़ने जाए तीन सौ छोटी बैठे चल जाए पर मिले आउसु कह आप हमारे सीखे सो आप छोटी में चल जाए
0: वो पढ़ाई लग मास्टर
1: पढ़ाई लगे विकास
0: करना आई लग मास्टर कहाँ का मास्टर
1: वो यहाँ भक्तपुर से यहाँ हमने पढ़ना स्कूल में पढ़ल तो हमारे पढ़ल जाए हमें तो पढ़ो पढ़ो आप दिशा के सब कहो वो छोटी में भूल जाए
0: भूल जाए कहाँ की छोटी हो
1: गाँव के तीन फोट
0: तीन
1: तीन फोट
0: वैसी पढ़ाई कल कल से कोई
1: हमने कहा
0: आपने खेती पाती कर लग अब किसान घर में जन्म हुईलक न रात्रि स्कूल में पढ़ना जाए थी तो दिवस को समय में काम करती क्या काम करती आपने
1: आप हम दोस्त वहाँ जाए के बिहान ये दिन के गोला जीना दोस्त जाए भात खा के पढ़ जाए तो पढ़ने के लिए शिशु को निकल मस्त वस्त सीख ली पढ़ल
0: खेती किसानी है अपन केल कली की कमिया फिर बैठी पड़ी
1: कहाँ कमिया से बैठली
0: कहाँ बैठी
1: कमिया गाँव में बैठली
0: कई वर्ष कई वर्ष उमेर आपने आपने कई वर्ष को उमेर हुई लग कमिया बैठल
1: कमिया बैठल हमारा 1500 में अब कमिया बैठे आप कुछ न कमिया बैठना कुछ न घरे
0: कमिया बैठल तो वर्ष दिन कमिया कर लग कतर ज्याला दिए था
1: कटरा ज्याला दे आठ मुड़ी ज्याला दे है आठ मुड़ी उदा बाली दे है
0: आठ मुड़ी बाली अन्न दिए था और
1: मसूरा छ मुड़ी
0: छ मुड़ी छ मुड़ी मसूरा दिए था कि
1: छ मुड़ी मसूरा आठ मुड़ी बाली
0: ये खाई कलर से पूजा था
1: कहाँ पुगे दोस्तों वो किसान से नीपू बोल के मंगा दुख के लिए हमारे हाल मल जल से डरना रहे कुछ नहीं रहे स्वाद बुना रहे कहा धान के आप को फिर डंडा ना लगाए आप को कौन ठाव मल जल ठाव भाई नि कहो ठाव समय पर लगे नि समय पर लगे उस तो बांध रहे उसमें के दुख कट ली हम
0: बेसा के खाए पड़ी
1: बेसा खाए पड़ो हाँ बैबांग समय पूग लिया हम बेसा खाए
0: बैबांग
1: बैबांग
0: बैबांग कतरकम पाई थी ये समय आपने बेसा खोद लग धान मकई कतरक भाव
1: हाँ वो जमा कहा रुपया पाची मकई अब रुपया पाची मकई यानी धान जोड़ी पांच पाची का है दो रुपये पांच पाची के
0: है पांच पाची आपने किने समय ना
1: किन वो किन
0: अब कमिया कतरक वर्ष बैठी आपने
1: कमिया तो एक दो वर्ष बैठी
0: एक दो वर्ष डेढ़ वर्ष का रहने पर
1: एक दो वर्ष बैठली बैठली जो घर में खेती बाड़ी अड्डा फड्डा करी दूसरे अड्डा फड्डा से धान ने बरसात नहीं कर
0: ये पहला बरसात हुई कल कल से थे मल रासायनिक मल नहीं आई था
1: ना
0: रासायनिक रासायनिक मल नहीं आई समय वही समय में गाय भैंसी मल चाहे खेत में नहीं रहा था
1: वो गाय भैंसी मल अब गाय भैंसी ढेर ढेर पर लेन आप डिहोम फावत का हो नहीं कि वो डिहोम से होता है उस तक
0: जो नहीं पूछता खेत में नहीं पूछा
1: खेती नहीं होता मल नहीं पा वो से कर
0: नत्र गाय भैंसी मल डायरी कल कल से हो ही पर
1: गाय होता गुरु भैंस छेड़ी भेड़ी पल होता मल फावत नहीं कि अब आसल जमाना में अब जो पूछी फिर नहीं अठो मुझे जिलो फिर नहीं दिन उस गाई जबाना फिर करो मन कर नहीं करो मन कहा कब
0: आदरणीय श्रोता रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्ज प्रसारी देश नायक सरकार कार्यक्रम बोलि रहेका छौं आज का हमारा अतिथि हुनुहुन्छ घोराई दुई सुर्खी नायिका शोभा राम चौधरी वहां ये अपने जोन पहिला जमाना का बात बताइलक हो ना उही पहिलेक जमाना खेतीपाती प्रमुख पेसा नै खेतीपाती हुन्छ होइन उयो प्रमुख पेसा खेतीपाती गर्ला फेरि खान नै पुग्थ्यो अरे खान नै पुग्छ
1: खाइ नि परेको ओ मार किन हो मार खा गए यार मार ये दूसरे थे साथ पड़े से वो सब पद है दूसरे का आ गए
2: अब हम तो लाख खेती करना उसी दुख
0: रहा पहला जमाना था दुख था अब गाड़ी घोड़ा नहीं चला तो दुख का जमाना हुई ना पहला जमाना और अब को जमाना में फर्क क्या था
1: आधे तो बहुत फर्क बा आधे लोग जवाना फर्क बा आ मजा मजा लगेगा मजा मजा खेलना करते न्यू हिल जैसे बेसाई ना अब सस्ता मिल अब राइट जवानों से साहू साहू हन उजा करना हो अजू मैं दो अटा अटा मुरी धान अटा अटा पाठी धान दो हमरे तो हर दिन जाजा कबो हमरे के देवी धंधा के देवी ये के ऊपर साहब उता मूली छुट्टबा और उता वो वापस लाग बेट बिगारी के देना के
0: उसे कर बा आजकल तो बेट बिगारी करे नहीं पड़ना
1: नहीं पड़ आजकल तो बेट बिगारी नहीं हो या तो कुछ नहीं हो
0: अपन व्यक्तिगत जीवन अपन व्यक्तिगत जीवन पहिला जुन चाहिँ एउटा रैती घरमा पैदा हुई ना जन्म हुई तब चाहिँ दुख सुख करके अब तक त आगिल आजकल त अपन प्रगति त होइल अपन कैसिन बा आजकल
1: आजकल त मैं अपन पौरक ले जे एक रखनो संसार हारे से फिर मैं देखा देगो ये मोर असिन प्रगति कर लखो मोर मेहनत कर लखो असिन मैं असिन करनो खेती पाती अपना खेती पाती फिर वो हम लोग नहीं कह के फिर और दहना डे दे के फिर वो फिर खाई पीगो था
0: कतरक जगह किन लगो आपने जोर
1: लगा जगह पहले से डन डन रहे आज जो मैं आज आपन पवर लेके 300-350 मीटर में ले मैं खोलो ढल की खोलो ढल का के खेती पाटी मजा बना खेती पाटी मजा बना एकदम सब
0: कई मेरी धन बनाई थी आपने
1: आसन मूरी हो तो हम ठोकर मार कर डर सका वो फोर ढेरवा लेकिन रह सत्ताईस बोरा लेकिन रहा ये मूरी के दाना खेना बोरा के 27 बोरा ले अधर
0: अधर अच्छा 27 बोरा लेकर कल कल से अपन लाख फिर 27 बोरा आ गया
1: 27 बोरा
0: खाना पुगी अपन शादी सुधार कर लगो आपने कई वर्ष उम्र में भोज के लिए
1: मैं तो साल 10-12 वर्ष में भोज के लिए छुट्टी मत दे तेरे
0: जन्नी बाबू की नहीं
1: हाँ नहीं हो जन्नी
0: कतरक वर्ष हुई जन्नी मुल्क
1: जन्नी मुल्क तो हो गया बस 17-18 वर्ष
0: छावा छाई बाबू
1: छावा छाई तो बाद में
0: कतरक बाद
1: छावन तीन भाई बात है छह फिर तीन बहनी बेटे चार बहनी लोग तो बड़की छाई मर गए
0: ओकर लड़का प्रकार तो बाबू
1: नहीं वो अगर लोग बरगा बिना हुए छुट्टी मर
0: छुट्टी और तो सबको घर बार मजा बा
1: और तो सबको मजा बा घर द्वार मजा बा लड़कन के अब उठा सब तीन भाई छुट्टी ले छुट्टी ले मैं दुख मेहनत कर
0: अपन सर कौन छावा बाबू
1: बड़का छावा बा अबंगा बा है
0: ओकर पटवन बाकी नहीं
1: भाव 300 भोज के देनो पहले गांव में से भोज के देनो तो वो फिर चल गए सर वहाँ पैसा ही चल गए दूसरे यहाँ महादेवा से गए देनो महादेवा से फिर वो कहाँ उजा नंदरवा के कहाँ गए दे देने दूसरे ओठो फिर झिंगनी से गए देने झिंगनी से गए देने तो उभर बा
0: ऐसे सेवा कर लगो खाई पकाई दिया था
1: खाई अब सपूता बंदोबस्त सपन बाटे तीन बहनी छाइन के फिर बंदोबस्त मजा बाटे खान पीन अब कठिन कठिन बड़की छाए मन ले छाए गहम बा छोटी छाए झिंगम बा छोटी
0: सबको को मजा बा
1: सबको
0: मजा अपन संगे आइल भोज कैल रामसम जिंदगी संगसंग बिताइल जन्नी त मुगिल ना और घर को वातावरण तो मजा बा आफ्नो जीवनमा कहाँ कहाँ काम गरे आपन
1: चामो बिन्ली गैया बिन्ली कुटो बिन्नीले सब कुछ चाट गरे हाम्रो ढैना बटले अड्डामा चाट फिर डौरी गोरु पछिको डौरी बटना छैनको डौरी बटना काम गरे त गरे काम गरे हर जुवा चस्ता हो आफ्नो उता कता हो सब चाट गरे
0: पहिलाको दिन सम्झी लेखेर लिन आजकल कसरी लाग्छ
1: आजकल पहिला त आफ सम्झी सम्झाउने कुछ निदेन भयो कलेस छैले अब कला हो कि हो कि हो जाए आजकल त चाहेको छ परेको देखे परेको डाइजो डेना का डेना कठै अब निरह जब आप डाइजो डेना हो कहाँ सब कुछ कठ देश सब हो जमाना
0: जमाना चाहिँ आयल पहिलाको जमानामा यही त आफ्नो त बुराइल हुइलक न बुराइल मनाएको लाग चाहिँ देश नागरिक सुरक्षा भत्ता दिए खाइछ कि नै भत्ता आइता कि नै आफन पत्रक बुच्छी
1: बाह्र
0: पैसा के कठी छ आफ्नो
1: ऊ पैसा अब जमानामा दुःख गरेर इम्पोर्ट उपचार गरेर अब कुछ चाट खिन
0: हाल्टनको डिए परेल कि नै
1: छाउ हन्डेठ ल्या पैसा ढ मह उपचार गर्न त्यही लुगा लत्ता लगिन सब कुछ म लगा दासा कर दुःख बेराम अस्पताल लै जाइसके गर्ने जे कथा लैके लाग्छन् वैशाखको महिनामा बेराम पर्नु सब उचाल
0: उपचार
1: लैजाए सब वहाँ जैसे चिताउने सब कहाँ नम्हे आँखी देखाइ नम्हिन्दु चाहिँ अस्पतालमा अपरेसन पर देखेँ सब कुछ अटके देखेँ मजाको छ एउटा छ भन्नुबाट अब दुखाइ चाहिँ आफ्नो आफ्नो पेसा छ तुही आफ्नो आफ्नो विचार धन्दा छ तुही यो बडका छ मजाको छ सब कुछ देखेँ दुःख बेराम पर्दै लाफिन काट कार्न काट कसरी लाग्छ कहिले पुग्छ मजा भयो
0: ए घर फुटलक छ फेरि सोध्छ पुग्छ
1: मुलो चाहिँ
0: घर फुटलक छ नै सँगै उहिलेको छ भर मजाको छ
1: सँगै बर्खा छ
0: बर्खा छ टिचर बाबै
1: अब सबै जाति मजाको छ आफ्नो त बाङ्लाबाट सेवा जाँदा त सबको कथा कथा
0: आफू कमजोर हुई कलकलेसी बाबाको सेवा गर्ला
1: सेवा एकदम कसिन बा कसिन कलाट जोही स्याड त्याकी निसा फिडाङ्गे स्याडा गर्दैछ जैसिने कि घर सुटल रहेछ कथा मजा कथा
0: आफन रोज रोज औषधि खाइला सुगर प्रेसर जैसे रोग त नै लागल हो
1: आफनलाई
0: बिरुवा खाइ नै परि
1: नै बिरुवा त अब पहिला पनि बिरुवा पर्छ त अब जति बिरुवा खोइन्छ सब टाँटी बिरुवा खोइन्छ सब झर बिरुवा खोइन्छ सब गा खोइन्छ
0: ठिक हुई कलकल मजा हुई कलकल खाइ नै परि
1: मजा
0: आफन बिहान सन्ध्याको भोजन कसरी गर्छ काका कन कन सिकाइछ
1: छैन त अब सब कुछ अब ज्याजा राख्ने अब हान्ने त अन्न हातमा पकिनु पटो पकाए खाइठु मजा खाऊ
0: कहाँ कहाँ दिएर खाए
1: कहाँ घर बाटेछु डेठा आफ्नो जुन खोइथ्यो हो डेठा आफ्नो त शैक्षिक हात नै खेज माछ मछि नै खेज
0: नै खेती माछ
1: सबको अब जसले शैक्षिक माछ मछि मही डेठ सबको जात खाइला डेठ
0: दुध दही खाइथे माछ मछि नै खाइथे
1: नि खाइ
0: कत्रक साल उहिलेको माछ मछि
1: छोड्न पाँच छ वर्ष
0: पछि कर्के माछ मछि छोड
1: जार रसेको मै पनि खेतु अब ठुल्ठुलो मै नै खेतु छैन त एउटा गर्छ दास्ता गर्छ मलाई
0: गाउँघरमा आफ्नो गाउँघरमा ए थारू जातिन् अरू जातिन् फरक जात बाबै होइन आफ्नो थारू जातिन् थारू जातिन् दाई बाबनको दुःख डेलक छावा पटेन कराइलक जैसिन ओसिक त अरू
1: अरू नन्ही पटोया था हमार लाल हेलो सौ आठ वर्ष हो गए स्वागत पास कर ले घर में बने का करना अब जी हमें और वास्तव बन था कि नियम बन कि कठिन सरकार नियम कठिन बाछम कठिन
0: क्या कर लाग
1: वो नदी पर रह नहीं छो और बिया कर नहीं बहुत कठिन
0: क्या अपन नचिने जो नाती जापान बस लग ना ओकर जन्नी यहाँ पढ़ाई थी ना स्कूल में उहे घर में नहीं आई थी
1: नहीं आई छो
0: अब नाटी से फिर संबंधन मजा नहीं हो
1: नहीं हो अब नाटी तो ऐसा तो मजा कर था नाटी
0: नहीं नहीं वो अपन लगता मजा कर लग नाटी उहे नाटी और ओकर जन्नी चाहिए नटिने बुहारी बा ना ओकर चाहिँ सम्बन्ध मजा बाकी उहे फेर झगडा पर्ल
1: मजा
0: बाटो नाटी नाटी हो उसको जन्नी थोर जन्नी त मजा बा मिलग्लो हो
1: आप काको बाटो हो मजा हो तर्स
0: नहीं देखा नहीं देखे न अब ऐसी कोई चीज है अब कानून का कुरा तो अब थारू मनाई जन्नी मनाई नहीं मिली कल कल से छुटकारा हुई मुद्दा मामिला कभी कल कल से जफे छुट जाए था न अब बाजेन बोइन सासुन ससुरन का लाग उहे मिली कल कल से आपने छुट्टी हुई उहे नहीं आई थी कल कल से मुद्दा नहीं लागले हेरी
1: ना
0: मुद्दा मामिला कर मुद्दा मामिला करलक हो मिलना हो तो उहे नटिया करे परी ना हमरे करे नहीं बनी हेरी ना ये तो हमरे तो वकील नहीं हुई हमरे बाहर बुझ लगता वैसे लागल ना तब नाटी आई कल कल से वो नाटी और चाहे नाटी नहीं बुहारी बा ना वो सब कुछ संग संग रख के खेरा करी ना और आपने इतना वर्ष हुई ना दुख सुख कर लग चाहे जिंदगी तो ढकाई गिरी अपन छावन पटेन को फिर माया लागल ना
1: जल्दी फिर
0: और नाटीन को भी मजा लागल माया लागल था अब कुछ कुछ करना पा हुई कल कल से ऐसी हुई कल कल से मजा हुई था ताकि ये कर्म कुछ बाकी नहीं
1: सब कुछ मजा के देखने छाउन के घर फूट लेते सब जगह दिन सब कुछ दिन चार सबको बराबर दिन सब मजा करना तो एक बोली बचन तो मजा कर हम छुट्टा पीछे लगन तो भैग अब हमारे जौन खाई दिन खेती अब जौन अपन साथ में बाबू हमारा सब पति बा खान पीन हेटे बा फूक प्या हेटे बा हमारा मजा कर बा और जाना
0: और जाने के छक्का लिए नहीं पड़ी अब आपने आपने अब कुछ जीवन में ऐसी कैसी कर लो गीत भजन फिर गाय जानती उहे फिर जानती उहे बताए फिर बाबाई कल को आपने कुछ चाहिए गाय गाय बजाना गाना जानी कल कल से अपने अल को कुछ भी कल कल से बता देवी
1: हमरो तो आओ कहाँ
0: कविता फिर गाई थी आपने
1: गाय जबानी उधर आप दुख बहुत भी आकर बारो
0: अलग अलग गाई थी
1: मंगूटा गीत गा दी ना
0: गाई थी गाई
1: हम बरसत के दिन देखी हाँ गंगा जे बहाये बरस दिन देखी जे हम गंगा जे बहाये दुख सुख जे गंगा जे छोड़िए दुख सुख जे गंगा मन छोड़िए दुख सुख जे माघ के दिन वहाँ देखी लहाये माघ के दिन वहाँ देखी लहाये अपन सोचल जैसी देहोरे मिला अपन सोचल जैसी देहोरे मिला अपन सोचल जैसे माघ के दिन वहाँ न कठी वो परठी माघ के दिन वहाँ न चठी वो परठी जन्म भर मैया लहे भी लगा जन्म भर मैया लहे भी लगा जन्म भर मैया
0: अरु सके थियो और बाबा जी
1: मैं टुका टुका सुना दो टुका
0: हाँ
1: टुका सुना ना
0: हाँ
1: टुका सुना दो अब टुका अब समय लाई टुका सुन समय समय महीने लाई
0: आदरणीय श्रोता हमरे ये आज का अतिथि हुई शोभाराम चौधरी ओकर बात कहले कहले हमार समय सीमा ओरा गिल तब आज हमरे ये रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्ज प्रसारित ज्येष्ठ नागरिक सरकार कार्यक्रम एतिन्जेल सुनेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता हाम्रो रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्ज का प्राविधिक मित्रहरू र आजको आफ्नो यो 83 वर्षको उमेरमा पनि आफ्नो विचार राख्न रामपुर सुर्खीदाङीबाट घोराई चाहिँ आएर आफ्ना विचार राख्नुहुने आजका अतिथि शोभाराम चौधरीलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो यो कार्यक्रम सञ्चालक देवराम खनाल पनि यस हप्ताको लागि बिदा चाहन्छ।